गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झालेली आहे आणि तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM. बंदे के नाम है अदनान. और उठो उठो, सुबह हो गई भाई साहब. कितना सो गए यार. नया दिन, नई शुरुआत है और कुछ नया करने का जज्बा है. नहीं है, होना चाहिए यार. क्यों ऐसा नेगेटिव सोचते हो सुबह सुबह? आज का दिन आपको खुशनुमा बनाना है विद एक सुविचार के साथ. तो सुविचार आज का कुछ ऐसा है कि जिंदगी में हमेशा इतने खुश रहो कि लोग आपको देखकर कहे, कल तक जो परेशान था आज इतना मुस्कुरा क्यों रहा है. भाई साहब सुप्रभात. क्या ना, देखो अपने जो पेन है, प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने तक ही रखिएगा और मुस्कान की चमकान बरकरार रखिएगा. और अपने आप जो सामने वाले लोग आपको कम देखते हैं ना, तो उनका जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा और वो ये सोचेगा कि भाई इसकी ज़िंदगी में इतना परेशान है फिर भी इतना अच्छी मुस्कान क्यों देता है. क्योंकि मुस्कान की चमकान जब तक आपके चेहरे पर होती है ना, तब तक नेगेटिव वाइब्स दूर होती है. तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आज की मॉर्निंग को गुड बनाइए विद RJ अदनान इन द शो.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मैंने ऑटो किया। भैया ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? मैंने पता बताया और सफर शुरू हो गया। कुछ मिनट चुप्पी रही, फिर अचानक भैया बोले, साहब लोग समझते हैं कि ऑटो चलाना आसान है, लेकिन हर दिन एक नई कहानी मिलती है। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और मैंने पूछा, कैसी कहानियाँ? भैया मुस्कुराए और बोले, कभी कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाता है, कभी कोई अस्पताल भाग रहा होता है, कभी कोई पहली डेट पर जा रहा होता है, और कभी कोई ब्रेकअप के बाद चुपचाप पीछे बैठा होता है। मैं सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा, साहब इस ऑटो में रोज सैकड़ों लोग बैठते हैं, लेकिन हर किसी की मंजिल अलग होती है और हर किसी की कहानी अलग होती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और बात कही, पैसा तो सब कमाते हैं साहब, लेकिन असली दौलत लोगों का भरोसा है। कई लोग अपना फोन, बैग, यहाँ तक के पैसे भी भूल जाते हैं, वापस कर दो तो उनकी खुशी देखकर दिन बन जाता है। मंजिल आने वाली थी। उतरते समय मैंने पूछा, भैया इतने सालों से सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको? उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, साहब जिंदगी भी ऑटो की तरह है, रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, ट्रैफिक भी मिलेगा, लेकिन चलते रहो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। मैंने किराया देकर उतर गया, लेकिन उस ऑटो वाले भैया सिर्फ मुझे घर तक नहीं छोड़कर गए थे, वो मुझे जिंदगी का एक असली सबक सिखा कर गए थे। कई बार सबसे बड़ी सीख हमें किताबों से नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले लोगों से।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

दोस्तों कभी नोटिस किया है कि मूड खराब होने की सबसे बड़ी वजह सिचुएशन नहीं होती बल्कि ओवरलोड होती है, थॉट्स होते हैं। तो हेल्दी लाइफ में जरा इस पर ही बात करते हैं। All is well, I'm telling on the morning show, freshness light radio flow. On MGM 90.8 FM. बस अभी जहां हो वहीं रुक जाओ और एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। देखो इससे ना तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा। धीरे धीरे सांस अंदर लो और उतने ही धीरे बाहर छोड़ो। कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं है। ये जो एक छोटा सा पॉज है ना, यही असली रिसेट बटन है। क्योंकि जब सांसें काम होती है तभी दिमाग भी सेटल होता है और दिल थोड़ा हल्का लगने लगता है। ट्राई करके देखो। कभी कभी सुकून बाहर नहीं बस एक गहरी सांस के अंदर छुपा होता है। बस डीप ब्रीथ इन एंड आउट, इतना ही करना है आपको। और आप ऐसा हर दिन मॉर्निंग में करोगे ना तो आपका मूड फ्रेश होगा और बहुत सारे बीमारियों को भी आप टाटा बाय बाय करोगे। सो एक छोटी सी आदत डालिए और बड़ा बदलाव लाइए। एंड बाकी सुनते रहिए। All is well, I'm telling on the morning show, freshness light radio can flow on MGM 90.8 FM.

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, डिप्रेशन में जाने के रीजंस क्या हो सकते हैं?
1: काफी सारे रीजंस है वैसे तो, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हम उनको ब्रैकेट कर सकते हैं ब्रॉडली चार चीजों में। जैसे एक हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जैसे उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उनमें बदलाव आना, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा फैक्टर आ सकता है कि जेनेटिक, क्योंकि बहुतों में ये जेनेटिक भी होता है कि उनके पेरेंट्स को डिप्रेशन रहा हो या ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो या और किसी रिलेटिव को रहा हो। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे नेगेटिव थिंकिंग का होना, जैसे कुछ हो जाने के बाद हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी के डिस्कशन से या हमारा कॉन्फिडेंस मान लो लो हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर हम कंफ्यूज होने लगते हैं, फिर हमको इन्फीरियोरिटी भी हो सकती है वो सोच के, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर है, तो दूसरा कॉज या फैक्टर वुड बी साइकोलॉजिकल। तीसरा हो सकता है, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंट का स्ट्रेस, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, कि अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस है, वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन दीज डेज, यू नो, या उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, टॉन्टिंग बिहेवियर है, तो ये हो गया एनवायरमेंट का। कभी कभी क्या होता है फैमिली में भी टॉन्टिंग बिहेवियर बहुत होता है फैमिली मेंबर्स का, जैसे सिबलिंग्स का होगा या हस्बैंड वाइफ के बीच होगा या सास ससुर, है ना, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हमको टॉन्ट करते हैं कभी कभी, तो ये एनवायरमेंट है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, तो ये सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रॉनिकली इल होते हैं, कि बहुत साल से, जैसे कोई बेड रिडन हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उनको फिजिकल एलिमेंट्स हो, कोई मोडालिटीज हुई हो, तो वो भी एनवायरनमेंट का ही भाग होता है। और चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए अभी। और अब लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में आता है जैसे पुअर स्लीप, जैसे आजकल हम जल्दी नहीं सो रहे हैं और हम जितना हमको सोना चाहिए उतना टाइम नहीं सो पा रहे हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जैसे अल्कोहल का सब्सटेंस लेना, ये बहुत एक कॉमन हो गया है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस यूज होता है, तो ये भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। तो हमने जो चार चीजें अभी डिस्कस की वो है बायोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, एनवायरमेंटल रीजंस एंड लाइफस्टाइल रीजंस।
0: सो मैम ने बताई हुई चीजें फॉलो कीजिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। एंड तुम चाहे मनात का प्रश्न असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करा 9359320080। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। MGM 90.8 FM पर आरजे अदनान आपके साथ है और आज गाने की फरमाइश आई है सोहम सबनिस की तरफ से इस गाने के लिए।

हाय हाय हाय क्या बात है सोम भाई, बहुत ही बढ़िया गाने की आपने फरमाइश की है। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन। चलिए फिर सोम भाई की फरमाइश पूरी करते हैं। आणि हो तुम्हाला सुद्धा जर कोणत्या गाण्याची फरमाइश पूर्ण करायची असेल तर नक्की तुम्ही मला डीएम करून कळवू शकता। डीएम करा आरजे अदनान या इंस्टा पेज वर किंवा व्हॉट्सअप करा 9359320080 पर 9359320080 पर। जल्दी से जल्दी आपकी फरमाइश बताए और सुनते रहे MGM 90.8 FM।

फिलहाल FDA की कार्रवाई ऐसी शुरू है ना कि जहाँ देखो वहाँ पर इसका दबदबा आपको नजर आ रहा होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और कल मैं होटल में खाना खाने गया दोस्तों के साथ। हमको खानी थी पनीर सब्जी, तो हमने उनको पूछा कि पनीर भाजी है, उन्होंने कहा पनीर अवेलेबल ही नहीं है। हमने पूछा क्यों भाई, बोला मार्केट में शॉर्टेज है। अब देखो भाई पनीर का मार्केट में शॉर्टेज है, इसका मतलब क्या है, पनीर के अंदर भी मिलावट हो रही थी और पनीर जो बनोता ना त्या कंपनी और धार पड़ी होती, म्हणजे आतापर्यंत आपण इतके वर्षांपासून डुप्लिकेट पनीर खात होतो। आणि यासोबतच अनेक दुकानांमध्ये सध्या खूप काही गोष्टी मिळत नाहीये, बिकॉज जितने भी मिलावटी चीजें थी ना वो सब बंद हो रही है। और कहा गया था कि FDA की तरफ से आपले छत्रपती संभाजीनगर में गुटखा पूरी तरीके से बैन हो चुका है और जो भी गुटखा बेचेगा उनकी दुकान सील होगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अपने शहर में बहुत सारे जगह है जहाँ पर आज भी गुटखा मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग कोडवर्ड यूज किया गया है। अब वो कोडवर्ड मैंने आपको बोल दिया तो मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, वही कोडवर्ड ना आप उस टपरी पर जाकर बोलोगे और आपको गुटखा मिल जाएगा। तो भाई इतना चीजें तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसी दुकानें जहाँ पर आज भी गुटखा मिलता है तो FDA वालों जरा यहाँ पर भी नजर डालिएगा। एक सवाल मेरा ये भी था कि जिस तरीके से FDA काम कर रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। एक बार उन्होंने अपने शहर के जो मेस है ना जहाँ पर टिफिन मिलते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खाते, उस मेस के ऊपर चेक करना चाहिए कि कितना हाइजीन वहाँ पर मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से वहाँ की दाल बनती है। आणि ज्या दिवशी FDA ने ना या मेस वाल्यांवर छापे टाकले ना अर्ध्याहून जास्त मेस बंद होतील, क्योंकि जिस तरीके से मेस में खाना बनता है भाई वो कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। हमने भी बहुत सालों तक मेस का खाना खाया तो हम ये दर्द समझ सकते हैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि मेस का खाना कैसा होता है। मैं सभी मेस की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेस दाल में दाल कम और पानी ज्यादा देते हैं और राइस में स्पेशल एडिशन होता है राइस का जिसको कंकर वाला राइस कहते हैं, तो ऐसा भी राइस वहां पर मिलता है। तो FDA वालों एक आपसे दरख्वास्त है, एक बार आप मेस भी चेक कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी मेस सबसे टेस्टी खाना देती है। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, होना चाहिए ना ऐसा? बताइए जरा DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर कि FDA ने मेस वालों के ऊपर छापे मारने चाहिए या नहीं। DM कीजिएगा इंस्टा पर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: शूटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, मतलब फिल्म की शूटिंग नहीं बात कर रहा हूँ, शूटिंग स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम इसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और स्पोर्ट्स के अंदर और एक स्पोर्ट्स होता है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस बो शूटिंग। और इस बारे में बात करने के लिए अपने साथ है संजना जायसवाल लुनावत मैम, जो कि क्रॉस बो शूटिंग प्लेयर है और हाल ही में उन्होंने एक मेडल भी जीता है। वो कौन सा मेडल है, क्या है, किस तरीके की उनकी जर्नी है, सब आज पता चलेगा। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। कैसे हो आप?
1: हम बढ़िया।
0: तो मैम सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आप इस फील्ड में कैसे आए?
1: मेरी जो मॉम है सो वो ओलंपिक गेम्स को काफ़ी फॉलो करते हैं। सो जब राज्यवर्धन सर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सो शी वॉज लाइक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स है। फिर जब अभिनव सर ने जीता था तो उस टाइम पे शी मेड मी सिट विथ हर। हम दोनों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से शूटिंग एक्सक्यूट किया, किस तरह से हाउ ब्यूटिफुल ही प्लेड, एंड वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। एंड देन माई फादर वॉज लाइक के ही वॉज सो फैसिनेटेड विद गन्स, ही वॉज लाइक के नहीं गन्स बहुत अच्छा होता है सेल्फ डिफेंस के लिए भी, डिसिप्लिन के लिए भी, फोकस के लिए भी। फिर ये डिसाइड हुआ फैमिली के अंदर कि ओके इसे एक ट्राई तो देना चाहिए स्पोर्ट्स को।
0: गन सेल्फ डिफेंस के लिए तो होता है, ये सभी को पता है, फोकस और डिसिप्लिन के लिए कैसे यूज होता है इसका? और
1: डिसिप्लिन इन द सेंस जब आप किसी वेपन के साथ रहते हो तो उसको हैंडल करना भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आप गए एंड उसे उठा के शूट किया, उसे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ता है, हैंडलिंग भी होती है। एंड जब आप ये खेलते हो ये गेम तो आपका पेशेंस लेवल, आपका फोकस, ये सब चीज़ें आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किस तरह से खेलते हो। सो वो डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है किसी भी इंसान की, सो उस चीज़ में एक हेल्प करता है।
0: सो कुछ ऐसी कहानी थी इनकी, जिस तरीके से संजना मैम शूटिंग फील्ड में आए थे और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और भी ढेर सारी बातें होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून।

0: Let's talk about crossbow shooting sports. You are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ हैं and crossbow shooting sports के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. अपने साथ है संजना जयसवाल लुनावत मैम. So मैम, शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्रॉसबो शूटिंग क्या होती है?
1: क्रॉसबो ये एक विंग है शूटिंग का ही. 1956 से क्रॉसबो की जो एसोसिएशन है सो वो वर्ल्ड कप्स करवा रही है, AIU जो है एसोसिएशन. सो इसमें ये होता है कि जो वेपन होता है वो राइफल होती है, बट उसका जो मैकेनिज्म है, जो बुलेट्स की जगह उसमें से आपको एरो लोड करना पड़ता है मैन्युअली, एंड देन वो शूट होते हैं. ओवरऑल कंसेप्ट है आर्चरी राइफल शूटिंग का मिलाकर.
0: ओके, लेकिन एग्जैक्टली इक्विपमेंट होता कैसा, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है ये.
1: ट्रिगर जिस तरह से गन का होता है, राइफल का होता है, जो लेंथ राइफल की होती है वही होती है, बट सिर्फ उस पे एक माउंट किया जाता है स्ट्रिंग, और वहीं से आपको एरो लोड करना पड़ता है. सो दिस इज बेसिकली उसका वेट जो आपको होता है वो राइफल प्लस आर्चरी का जो वेट होता है वो होता है.
0: सो मैम, आप शूटिंग करते थे फिर क्रॉसबो शूटिंग में आए, तो ये सर ट्रांसफर आपने क्यों किया?
1: क्रॉसबो होता है वो ओपन एयर में खेला जाता है, इंडोर नहीं. और जो मैं इवेंट में खेलती थी पहले 10 मीटर एयर राइफल, सो वो इंडोर में होता है. तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जितना आप चैलेंजेस को फेस करते हो तो उतना आपको जो बेसिक्स आपके होते हैं वो क्लियर होते हैं. सो मुझे एडवांस, मुझे मेरा जो है 10 मीटर एयर राइफल को अपग्रेड करना था, मुझे अच्छा करना था उसमें. तो मुझे किसी से पता चला इस इवेंट के बारे में जो कि नेशनल प्लेयर है, सो फिर मैंने इसे ट्राई किया. फिर जैसे जैसे मुझे इसमें पता चलते गया ओके दिस इज द एडवांसमेंट, किसी इंडियन ने नहीं खेला, नहीं जीता किसी इंडियन ने मेडल, खेले तो बहुत होने हैं. सो देन मैंने इसे भी स्टार्ट किया साइड बाय साइड.
0: और मैम, आपने हाल ही में क्रॉसबो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उस बारे में हमें बताइए.
1: इसमें मैंने क्रॉसबो में मैंने अभी नेशनल्स हुई, सो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है इन इंडिविजुअल कैटेगरी वुमेन्स, सीनियर वुमेन्स में. और फिर मैंने मिक्स्ड में भी एंट्री डाली थी इस साल. सो इस साल मैंने एक गोल्ड मेडल जीता है तन्मय के साथ. सो द इवेंट वॉज इन जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, इट वॉज अ गुड वन.
0: तो क्रॉसबो शूटिंग क्या होती है, किस तरीके से खेली जाती है, इस बारे में अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए स्टे ट्यून.

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM RJ अदनान आपके साथ है एंड आज हम बात कर रहे हैं क्रॉसबो शूटिंग के स्पोर्ट्स प्लेयर संजना जायसवाल लुनावत मैम के साथ साथ जिन्होंने हाल ही में नेशनल क्रॉसबो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्रॉसबो शूटिंग की प्रिपरेशन तैयारी कैसे होती है इस बारे में हमें बताइए।
1: ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी शूटर्स है राइफल हो पिस्टल हो दे प्ले इन एनी इवेंट इन शूटिंग वो लोग आते हैं इसे ट्राई करने के लिए। वो लोग आते हैं एंड प्री नेशनल्स खेलते हैं फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं नेशनल्स खेलते हैं तो इट्स लाइक ओवरऑल जो पॉइंट टू खेलते हैं उन्हें ओपन का एक्सपोजर होता है ओपन एयर का ओपन एनवायरमेंट का बेसिकली तो उन लोगों के लिए वो एक एक क्या बोलते हैं आपको एक प्लस पॉइंट रहता है। जो राइफल शूटिंग करते हैं उन्हें ऐसा होता है कि नहीं राइफल का जो ट्रिगरिंग का है फैसिलिटी वो इसमें भी है फैसिलिटी इन द सेंस मैकेनिज्म जो होता है शूटिंग का मैकेनिज्म जो होता है ट्रिगरिंग करने का वो सेम होता है ऑलमोस्ट। फिर आर्चर्स को लगता है अरे तो हमारा बो एंड एरो का एरो निकलता है इसमें से शूट होता है सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। सो जितने भी ये इवेंट खेलते हैं शूटिंग का दे ऑल असेंबल टुगेदर।
0: और अभी आपने बताया कि अपने इंडिया में क्रॉसबो शूटिंग के प्लेयर बहुत कम हैं तो इसके पीछे रीजन क्या होगा?
1: बेसिकली अवेयरनेस भी एक बोल सकते हैं एंड अभी भी यानी मिस वी आर द एसोसिएशन इज ट्राइंग कि इसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन है लेकिन इनके इस लेवल पे नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट फैसिलिटीज इतने अच्छे से अवेल करवा सके क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अबाउट 2012 के बाद या 2014 के बाद ही स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा जो आपको प्रोग्रेसिव स्टेट देखने को आ रही है वो अब ज़्यादा आ रही है। पहले लोग ऐसे थे कि जॉब्स कर लो या स्टडीज कर लो अभी स्पोर्ट्स को भी एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया जा रहा है। सो राइट नाउ वी आर इन अ स्टेज टू डेवलप क्रॉसबो इन इंडिया।
0: सो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा कुछ ही देर में तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने एंड स्टे ट्यून।
2: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Chhatrapati Sambhajinagar.

0: लव फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM और RJ अदनान आपके साथ है। एंड आज हम बात कर रहे हैं क्रॉसबो शूटिंग इस स्पोर्ट्स के प्लेयर संजना जायसवाल लुनावत मैम के साथ। सो मैम, आपने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पोर्ट्स में, शूटिंग स्पोर्ट्स में, अपने इंडिया में आपको क्या लगता है मिलनी चाहिए उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है या नहीं?
1: इम्पोर्टेंस मिल रही है। अगर आप ग्राफ देखो तो शूटिंग में ही ओलंपिक्स के अधिकतर मेडल हर साल आते हैं। हर चार साल में आपको शूटिंग के मेडल्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो शूटिंग इज अ एक्सपेंसिव गेम, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो उस वजह से लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं आने में, बट वंस दे आर देयर तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इतना भी ज्यादा कॉस्टलीस्ट नहीं है, वी कैन, इट्स अ बेरेबल।
0: नए प्लेयर्स को आगे आना है, स्पेशली आज के यूथ को, जेंस जी को, या तो फिर अभी जो स्कूल में है उनसे छोटे, तो ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए ग्राउंड जीरो पे क्या करना चाहिए?
1: ग्रास रूट लेवल पे बहुत से न्यू इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं और वो लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा बनाना। आपको एक दो घंटे के लिए भी वो लोग अलाउ करते हैं, बहुत मिनिमल फीस ली जाती है। जैसे मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ 200 रुपीज लिया जाता पर आ, वो लोग 25 पैलेट देते हैं आपको एयर राइफल के लिए, एयर पिस्टल के लिए। वो आपको सिखाते हैं बेसिक्स जो होते हैं, 1 आर 2 आप वहाँ जाइए आपके बच्चों को लेके, या आप खुद भी जा सकते हो, एज बैरियर नहीं है। आप जाए, आप प्रैक्टिस करें, 200 या 300 रुपीज, आई डोंट थिंक सो कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मास अवेयरनेस नहीं इस चीज को लेके, सो दे कैन गो देयर, दे कैन ट्राई इट। और ऐसा भी नहीं कि बर्डन आपको खरीदना ही है आपकी वेपन। बहुत से एसोसिएशन रेंट पे भी देते हैं, या अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। सिर्फ पैलेट्स का जो होता है दे से कि आपको आपका लेना पड़ेगा। सो दिस इज द होल थिंग। क्रॉसबो में भी सेम सिस्टम है कि आप वहाँ जाए, मिनिमल एक फीस आपको जमा करानी होती है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं से वेपन आउटसोर्स करते हैं।
0: तो कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग ये स्पोर्ट्स है, लोगों ने इसकी तरफ आना भी चाहिए और इसमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है, बस प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सो अपनी बातें और भी चलेंगी कुछ ही देर में, स्टे ट्यून।

0: let's talk about sports. You are listening to MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है and अपने साथ है संजना जायसवाल लुनावत मैम जो कि क्रॉसबो शूटिंग प्लेयर है. So मैम एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है?
1: तो 0.177, 0.22 ये दो में मैं खेलती हूँ. 0.177 जो होती है 10 मीटर्स एयर राइफल को कहते हैं और 0.22 50 मीटर्स थ्री पोजीशन में यूज होती है राइफल शूटिंग में. तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, थोड़ी इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो 0.22 में लाइसेंस्ड लगता है, लाइसेंस लगता है. जबकि जो 10 मीटर्स 0.177 है, इट्स लाइसेंस की जरूरत नहीं होती उसमें. क्रॉसबो इज द सेम हंटिंग इक्विपमेंट है. तो यूरोपियन नेशंस यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है तो वहाँ कुछ लोगों को परमिट लगती है, जबकि कुछ कंट्रीज में उसको परमिट की ज़रूरत नहीं होती है. बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, कंट्री की जो पॉलिसीज होती है उस हिसाब से होता है. फ्यूचर प्लान्स में मेरे ये है कि इंडिया के लिए किसी भी तरह से क्रॉसबो में मेडल लेना है. एंड हैंड इन हैंड मेरा 0.22 का भी प्रिपरेशन चल रहा है राइफल में, विच इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट. तो मैंने अभी रिसेंटली अबू धाबी ओपन मास्टर गेम्स हुए उसमें मैंने गोल्ड लिया है. सो द थिंग इज लाइक के दोनों भी एक ओलंपिक स्पोर्ट एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैंड इन हैंड जा रहा है. क्योंकि इंडिया को लाइक इफ वी वांट, जब हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड नेशन बनाना है, सो इट्स लाइक ओवरऑल एक्सपेक्ट से बनता है कोई भी कंट्री. सो स्पोर्ट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. सो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे नेशन के लिए.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और जो भी आपके प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए यही दुआ करते हैं. गोल्ड मेडल भी आप जीते यही उम्मीद करते हैं. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट. स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपती।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
5: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति। कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन। फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपती संभाजी। कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in.
4: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: होते क्यों नहीं?
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। अब शाम का ये समय दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा रुकने, मुस्कुराने और अपने लिए कुछ पल निकालने का वक्त है। चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो या फिर अपने काम में थोड़ा बिजी हो, हम आपके साथ है शानदार संगीत और अच्छी बातों के साथ। शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होता बल्कि नए विचारों की नई एनर्जी भी होती है और सपनों के साथ खूबसूरत यादें बनाने का एक नया मौका भी। इसलिए आज की शाम को थोड़ा खास बनाइए। अपनी मन पसंदीदा चाय कॉफी का कप लीजिए, चेहरे पर एक मुस्कान रखिए और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। इस खूबसूरत शाम को और भी सुरीला बनाते हैं आपके लिए आने वाले कुछ बेहतरीन गानों के साथ जो आपके मूड को भी थोड़ा बेहतर बना देंगे। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज की शाम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ताकतवर बात करते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और कहिए आई एम द बेस्ट। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कोई हमसे ज्यादा सफल दिखता है, कोई ज्यादा प्रतिभाशाली दिखता है तो कोई ज्यादा आत्मविश्वासी, और इसी तुलना में हम कभी कभी अपनी ही खूबियों को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब आप खुद से कहते हैं मैं बेस्ट हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से बेहतर साबित होने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि हम अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक खास पहचान होती है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका सफर किसी और जैसा नहीं होता। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, चुनौतियाँ डराने की बजाय सिखाने लगती है, और सबसे अच्छी बात, आप दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी क्षमता पर भरोसा करना सीख जाते हैं। तो आज इस शाम खुद से एक वादा कीजिए, आईने में देखकर मुस्कुराइए और कहिए मैं सक्षम हूँ, मैं खास हूँ और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा या करूँगी। याद रखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा आत्मविश्वास से होती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमें छोटी छोटी कहानियों से मिलती है। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। उसका बेटा अक्सर सोचता था कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता। किसान मुस्कुराता है और कहता है, बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत बनी रहे तो फल जरूर मिलता है। कुछ महीनों बाद वही खेत हरी भरी फसल से लहरा उठता है। तब बेटे को समझ आया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत और इंतजार दोनों जरूरी है। इस छोटी सी कहानी की सीख भी बहुत बड़ी है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि अच्छी चीजों को समय लगता है। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, कोई सपना हो या रिश्ते, हर चीज को मेहनत, विश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आज आपकी मेहनत का नतीजा नहीं दिख रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपके सपनों का बीज अभी जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हो। तो इस शाम को बस इतना याद रखिए, मेहनत करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.82 FM, साथ है तो बात है।
1: मुंह तो बंद करो अंकल।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई बड़ी वजह नहीं होती, फिर भी उनका साथ दिल को सुकून दे जाता है। कभी किसी से मिलना, कुछ देर बातें करना, उनकी आवाज़ सुनना या बस उनका हालचाल जान लेना, ये भी पूरे दिन को बेहतर बना देता है। जिंदगी की भागदौड़ में हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान से जुड़े होते हैं जिसके साथ बिताया गया समय खास महसूस होता है। उनसे बातचीत में घड़ी की सुइयां कब आगे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस दिल से निकली बातें और चेहरे पर एक मुस्कान। रिश्तों की खूबसूरती भी यही है कि वो छोटी छोटी बातों से मजबूत बनते हैं। एक मैसेज, एक फ़ोन कॉल या फिर कुछ पल का साथ बैठ कर हंसना, ये पल भले ही छोटे होते हैं लेकिन इनकी यादें बहुत ही बड़ी बनती है। कभी कभी किसी का साथ हमें ये एहसास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी अपनापन बाकी है, और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों से मिलना और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा खास इंसान है जिसकी मौजूदगी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो, तो आज उन्हें ज़रूर बताइए कि उनकी अहमियत क्या है आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हमें अचानक मुस्कुरा देती है और उनमें सबसे खास बात होती है वो स्कूल के दिनों की यादें। याद है वो सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना, दोस्तों के साथ बस या रिक्शा में मस्ती करना और क्लास में टीचर के आते ही एकदम शांत हो जाना। याद है वो लंच ब्रेक का इंतजार जब अपना टिफिन कम और दोस्तों का टिफिन ज्यादा पसंद आता था। स्कूल के वो दिन कितने सरल और बेफिक्र थे, न करियर की चिंता न जिम्मेदारियों का बोझ, बस दोस्त, किताबें, खेल और मैदान और ढेर सारी शरारतें। कभी होमवर्क पूरा न होने का डर तो कभी परीक्षा खत्म होने की खुशी, और सबसे खास बात वो थी दोस्त जिनके साथ हंसते हंसते पूरा दिन निकल जाता था। आज भले ही हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो लेकिन स्कूल की यादें आज भी दिल के किसी कोने में बिल्कुल ताजा है। समय आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। स्कूल के वो सुनहरे दिन हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती, बस कुछ पल ही काफी होते हैं। तो आज अगर आपको अपने स्कूल के दोस्तों की याद आ रही है तो क्यों ना हम उन्हें एक मैसेज या फ़ोन करें, शायद उनकी आवाज़ सुनकर पुराने दिन जिंदा हो जाए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MG 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जब हम स्कूल की बातें करते हैं तो सिर्फ किताबें, क्लासरूम और एग्जाम्स की याद नहीं आती। स्कूल हमें जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक भी सिखाता है और उनमें से एक है शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी बांटना और दूसरों की परवाह करना। याद कीजिए जब हम अपना टिफिन दोस्तों के साथ शेयर करते थे, कभी किसी की पेंसिल खो जाती थी तो दूसरा दोस्त अपनी पेंसिल दे देता था, कभी कोई उदास होता था तो पूरा ग्रुप उसे हंसाने की कोशिश करता था। शायद तब हमें एहसास नहीं होता था, लेकिन वहीं से हम इंसानियत और दोस्ती के असली मायने सीखे थे। स्कूल हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। किसी की मदद करना, किसी की बात ध्यान से सुनना या जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहना, ये छोटी छोटी बातें ही बड़े इंसान की पहचान बनती है। आज भले ही हम स्कूल से बहुत आगे निकल आए हो, लेकिन शेयरिंग एंड केयरिंग का सबक हमने वहीं से सीखा है जो जिंदगी में काफी मायने भी रखता है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच या समाज में अगर हम एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। आज की शाम बस इतना याद रखिए, सिर्फ नॉलेज ही सफल नहीं बनाती इंसान को, तो सम्मान, सहयोग और अपनापन भी इतना ही जरूरी है। आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं एमजीएम नारी पॉइंट एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक समय था जब गर्मियों की छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। स्कूल बंद, सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ खेलना, नानी नाना या दादी दादा के घर जाना और पूरे दिन मस्ती करना, यही तो समर वेकेशन की पहचान थी। लेकिन आज का समय थोड़ा बदल गया है। अब बच्चों की छुट्टियां भी पहले जैसी नहीं रही। छुट्टियां शुरू होते ही समर कैंप, ऑनलाइन क्लासेस, हॉबी कोर्स, ट्यूशन और कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती है। बच्चे पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। बेशक नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन की वो बेफिक्री छुट्टियां कहीं पीछे छूट जाती है। वो बिना किसी प्लान के खेलना, साइकिल चलाना, आम के पेड़ के नीचे बैठना और दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, इन सब अपनी ही एक अलग खुशी है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना और सीखते रहना ज़रूरी है, लेकिन आराम करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना और बचपन को खुलकर जीना भी उतना ही ज़रूरी है। वेल, अगर आप बच्चे हो तो इन पलों को मिस करोगे आगे जाके, और अगर बड़े हो तो अपने बच्चों को ज़रूर बताइए इन पलों की अहमियत। एंड सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: देखते ही देखते आज की ये खूबसूरत शाम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि आज का हमारा साथ, हमारी बातें और आपके पसंदीदा गीतों ने आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बनाया होगा। अगर हमारी किसी बात ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो, किसी गीत ने कोई पुरानी याद ताज़ा की हो या कुछ पलों के लिए आपकी थकान हम कम कर पाए हो, तो हमारा ये सफ़र सफल रहा। याद रखिए, ज़िंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का। इसीलिए कल का इंतज़ार कीजिए, लेकिन आज के खूबसूरत पलों को भी दिल से जीना मत भूलिए। अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ समय बिताइए, उनका ख्याल रखिए और सबसे ज़रूरी बात, खुद का भी ख्याल रखिए। अब मुझे आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन ये सिर्फ आज की शाम के लिए। कल फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नए गानों के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, MGM पेट केअर।

0: பெர்ஸோ கா கார்வா வித் ஆர்ஜி அதனான் ஆன் எம்ஜிஎம் 90.8 எஃப்எம். एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मैंने ऑटो किया। भैया ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? मैंने पता बताया और सफर शुरू हो गया। कुछ मिनट चुप्पी रही, फिर अचानक भैया बोले, साहब लोग समझते हैं कि ऑटो चलाना आसान है, लेकिन हर दिन एक नई कहानी मिलती है। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और मैंने पूछा, कैसी कहानियाँ? भैया मुस्कुराए और बोले, कभी कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाता है, कभी कोई अस्पताल भाग रहा होता है, कभी कोई पहली डेट पर जा रहा होता है, और कभी कोई ब्रेकअप के बाद चुपचाप पीछे बैठा होता है। मैं सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा, साहब इस ऑटो में रोज सैकड़ों लोग बैठते हैं, लेकिन हर किसी की मंजिल अलग होती है और हर किसी की कहानी अलग होती है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और बात कही, पैसा तो सब कमाते हैं साहब, लेकिन असली दौलत लोगों का भरोसा है। कई लोग अपना फोन, बैग, यहाँ तक के पैसे भी भूल जाते हैं। वापस कर दो तो उनकी खुशी देखकर दिन बन जाता है। मंजिल आने वाली थी। उतरते समय मैंने पूछा, भैया इतने सालों से सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको? उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, साहब जिंदगी भी ऑटो की तरह है। रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, ट्रैफिक भी मिलेगा, लेकिन चलते रहो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। मैंने किराया देकर उतर गया, लेकिन उस ऑटो वाले भैया सिर्फ मुझे घर तक नहीं छोड़कर गए थे, वो मुझे जिंदगी का एक असली सबक सिखा कर गए थे। कई बार सबसे बड़ी सीख हमें किताबों से नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले लोगों से।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

फिलहाल FDA की कार्रवाई ऐसी शुरू है ना कि जहाँ देखो वहाँ पर इसका दबदबा आपको नजर आ रहा होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और कल मैं होटल में खाना खाने गया दोस्तों के साथ। हमको खानी थी पनीर सब्जी, तो हमने उनको पूछा कि पनीर भाजी है, उन्होंने कहा पनीर अवेलेबल ही नहीं है। हमने पूछा क्यों भाई, बोला मार्केट में शॉर्टेज है। अब देखो भाई पनीर का मार्केट में शॉर्टेज है, इसका मतलब क्या है, पनीर के अंदर भी मिलावट हो रही थी आणि पनीर जे बनवतात ना त्या कंपनीवर धार पडली होती। म्हणजे आतापर्यंत आपण इतक्या वर्षांपासून डुप्लिकेट पनीर खात होतो आणि यासोबतच अनेक दुकानांमध्ये सध्या खूप काही गोष्टी मिळत नाहीये, बिकॉज जितने भी मिलावटी चीजे थी ना वो सब बंद हो रही है। और कहा गया था कि FDA की तरफ से आपने छत्रपति संभाजी नगर में गुटखा पूरी तरीके से बैन हो चुका है और जो भी गुटखा बेचेगा उनकी दुकान सील होगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अपने शहर में बहुत सारे जगह है जहाँ पर आज भी गुटखा मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग कोडवर्ड यूज किया गया है। अब वो कोडवर्ड मैंने आपको बोल दिया तो मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, वही कोडवर्ड ना आप उस टपरी पर जाकर बोलोगे और आपको गुटखा मिल जाएगा। तो भाई इतना चीजें तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसी दुकानें जहाँ पर आज भी गुटखा मिलता है तो FDA वालों जरा यहाँ पर भी नजर डालिएगा। एक सवाल मेरा ये भी था कि जिस तरीके से FDA काम कर रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। एक बार उन्होंने अपने शहर के जो मेस है ना जहाँ पर टिफिन मिलते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खाते, उस मेस के ऊपर चेक करना चाहिए कि कितना हाइजीन वहाँ पर मेंटेन किया जाता है और किस तरीके से वहाँ की दाल बनती है। आणि ज्या दिवशी FDA ने ना या मेस वाल्यांवर छापे टाकले ना अर्ध्याहून जास्त मेस बंद होतील, क्योंकि जिस तरीके से मेस में खाना बनता है भाई वो कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। हमने भी बहुत सालों तक मेस का खाना खाया तो हम ये दर्द समझ सकते हैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि मेस का खाना कैसा होता है। मैं सभी मेस की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेस दाल में दाल कम और पानी ज्यादा देते हैं और राइस में स्पेशल एडिशन होता है राइस का जिसको कंकर वाला राइस कहते हैं, तो ऐसा भी राइस वहां पर मिलता है। तो FDA वालों एक आपसे दरख्वास्त है, एक बार आप मेस भी चेक कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी मेस सबसे टेस्टी खाना देती है। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, होना चाहिए ना ऐसा? बताइए जरा DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर कि FDA ने मेस वालों के ऊपर छापे मारने चाहिए या नहीं। DM कीजिएगा इंस्टा पर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: शूटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, मतलब फिल्म की शूटिंग नहीं बात कर रहा हूँ, शूटिंग स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और आज हम इसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और स्पोर्ट्स के अंदर और एक स्पोर्ट्स होता है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस बो शूटिंग। और इस बारे में बात करने के लिए अपने साथ है संजना जायसवाल लुनावत मैम, जो कि क्रॉस बो शूटिंग प्लेयर है और हाल ही में उन्होंने एक मेडल भी जीता है। वो कौन सा मेडल है, क्या है, किस तरीके की उनकी जर्नी है, सब आज पता चलेगा। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। कैसे हो आप?
1: हम बढ़िया।
0: तो मैम सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आप इस फील्ड में कैसे आए?
1: मेरी जो मॉम है वो ओलंपिक गेम्स को काफी फॉलो करते हैं। जब राज्यवर्धन सर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था शी वॉज लाइक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स है। फिर जब अभिनव सर ने जीता था तो उस टाइम पे शी मेड मी सिट विथ हर। हम दोनों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से शूटिंग एक्सक्यूट किया, किस तरह से हाउ ब्यूटिफुल ही प्लेड, एंड वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। एंड देन माई फादर वॉज लाइक के ही वॉज सो फैसिनेटेड विद गन्स, ही वॉज लाइक के नहीं गन्स बहुत अच्छा होता है सेल्फ डिफेंस के लिए भी, डिसिप्लिन के लिए भी, फोकस के लिए भी। फिर ये डिसाइड हुआ फैमिली के अंदर कि ओके इसे एक ट्राई तो देना चाहिए इस स्पोर्ट्स को।
0: गन सेल्फ डिफेंस के लिए तो होता है, ये सभी को पता है, फोकस और डिसिप्लिन के लिए कैसे यूज होता है इसका?
1: डिसिप्लिन इन द सेंस जब आप किसी वेपन के साथ रहते हो तो उसको हैंडल करना भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि आप गए एंड उसे उठा के शूट किया, उसे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ता है, हैंडलिंग भी होती है। एंड जब आप ये खेलते हो ये गेम तो आपका पेशेंस लेवल, आपका फोकस, ये सब चीज़ें आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किस तरह से खेलते हो। वो डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है किसी भी इंसान की, उस चीज़ में एक हेल्प करता है।
0: कुछ ऐसी कहानी थी इनकी, जिस तरीके से संजना मैम शूटिंग फील्ड में आए थे और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और भी ढेर सारी बातें होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड। प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: Let's talk about crossbow shooting sports. You're listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ हैं and crossbow shooting sports के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. अपने साथ है संजना जयसवाल लुनावत मैम. So मैम, शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्रॉस बो शूटिंग क्या होती है?
1: क्रॉस बो ये एक विंग है शूटिंग का ही. 1956 से क्रॉस बो की जो एसोसिएशन है सो वो वर्ल्ड कप्स करवा रही है, AIU जो है एसोसिएशन. सो इसमें ये होता है कि जो वेपन होता है वो राइफल होती है, बट उसका जो मैकेनिज्म है, जो बुलेट्स की जगह उसमें से आपको एरो लोड करना पड़ता है मैन्युअली, एंड देन वो शूट होते हैं. ओवरऑल कंसेप्ट है आर्चरी राइफल शूटिंग का मिलाकर.
0: ओके, लेकिन एग्जैक्टली इक्विपमेंट होता कैसा, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है ये.
1: ट्रिगर जिस तरह से गन का होता है, राइफल का होता है, जो लेंथ राइफल की होती है वही होती है, बट सिर्फ उस पे एक माउंट किया जाता है स्ट्रिंग, और वहीं से आपको एरो लोड करना पड़ता है. सो दिस इज बेसिकली उसका वेट जो आपको होता है वो राइफल प्लस आर्चरी का जो वेट होता है वो होता है.
0: सो मैम, आप शूटिंग करते थे फिर क्रॉसबो शूटिंग में आए, तो ये सर ट्रांसफर आपने क्यों किया?
1: क्रॉसबो होता है वो ओपन एयर में खेला जाता है, इंडोर नहीं. और जो मैं इवेंट में खेलती थी पहले 10 मीटर एयर राइफल, सो वो इंडोर में होता है. तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जितना आप चैलेंजेस को फेस करते हो तो उतना आपको जो बेसिक्स आपके होते हैं वो क्लियर होते हैं. सो मुझे एडवांस, मुझे मेरा जो है 10 मीटर एयर राइफल को अपग्रेड करना था, मुझे अच्छा करना था उसमें. तो मुझे किसी से पता चला इस इवेंट के बारे में जो कि नेशनल प्लेयर है, सो फिर मैंने इसे ट्राई किया. फिर जैसे जैसे मुझे इसमें पता चलते गया ओके दिस इज द एडवांसमेंट, किसी इंडियन ने नहीं खेला, नहीं जीता किसी इंडियन ने मेडल, खेले तो बहुत होने हैं. सो देन मैंने इसे भी स्टार्ट किया साइड बाय साइड.
0: और मैम, आपने हाल ही में क्रॉसबो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उस बारे में हमें बताइए.
1: इसमें मैंने क्रॉसबो में मैंने अभी नेशनल्स हुई सो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है इन इंडिविजुअल कैटेगरी वुमेन्स, सीनियर वुमेन्स में. और फिर मैंने मिक्स्ड में भी एंट्री डाली थी इस साल. सो इस साल मैंने एक गोल्ड मेडल जीता है तन्माई के साथ. सो द इवेंट वाज इन जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, इट वाज अ गुड वन.
0: तो क्रॉसबो शूटिंग क्या होती है, किस तरीके से खेली जाती है, इस बारे में अभी हमने जाना, और भी हम ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM RJ अदनान आपके साथ है एंड आज हम बात कर रहे हैं क्रॉसबो शूटिंग के स्पोर्ट्स प्लेयर संजना जायसवाल लुनावत मैम के साथ साथ जिन्होंने हाल ही में नेशनल क्रॉसबो शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्रॉसबो शूटिंग की प्रिपरेशन तैयारी कैसे होती है इस बारे में हमें बताइए।
1: ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी शूटर्स है राइफल हो पिस्टल हो दे प्ले इन एनी इवेंट इन शूटिंग वो लोग आते हैं इसे ट्राई करने के लिए। वो लोग आते हैं एंड प्री नेशनल्स खेलते हैं फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं नेशनल्स खेलते हैं तो इट्स लाइक ओवरऑल जो पॉइंट टू खेलते हैं उन्हें ओपन का एक्सपोजर होता है ओपन एयर का ओपन एनवायरमेंट का बेसिकली तो उन लोगों के लिए वो एक एक क्या बोलते हैं आपको एक प्लस पॉइंट रहता है। जो राइफल शूटिंग करते हैं उन्हें ऐसा होता है कि नहीं राइफल का जो ट्रिगरिंग का है फैसिलिटी वो इसमें भी है फैसिलिटी इन द सेंस मैकेनिज्म जो होता है शूटिंग का मैकेनिज्म जो होता है ट्रिगरिंग करने का वो सेम होता है ऑलमोस्ट। फिर आर्चर्स को लगता है अरे तो हमारा बो एंड एरो का एरो निकलता है इसमें से शूट होता है सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। सो जितने भी ये इवेंट खेलते हैं शूटिंग का दे ऑल असेंबल टुगेदर।
0: और अभी आपने बताया कि अपने इंडिया में क्रॉसबो शूटिंग के प्लेयर बहुत कम है तो इसके पीछे रीजन क्या होगा?
1: बेसिकली अवेयरनेस भी एक बोल सकते हैं एंड अभी भी यानी मिस बी द एसोसिएशन इज ट्राइंग कि इसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन है लेकिन इनके इस लेवल पे नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट फैसिलिटीज इतने अच्छे से अवेल करवा सके क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अबाउट 2012 के बाद या 2014 के बाद ही स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा जो आपको प्रोग्रेसिव स्टेट देखने को आ रही है वो अब ज़्यादा आ रही है। पहले लोग ऐसे थे कि जॉब्स कर लो या स्टडीज कर लो अभी स्पोर्ट्स को भी एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया जा रहा है। सो राइट नाउ वी आर इन अ स्टेज टू डेवलप क्रॉसबो इन इंडिया।
0: सो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा कुछ ही देर में तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने एंड

0: हेलो फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM और RJ अदनान आपके साथ है। एंड आज हम बात कर रहे हैं क्रॉसबो शूटिंग इस स्पोर्ट्स के प्लेयर संजना जायसवाल लुनावत मैम के साथ। सो मैम, आपने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पोर्ट्स में, शूटिंग स्पोर्ट्स में, अपने इंडिया में आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है या नहीं?
1: इम्पोर्टेंस मिल रही है। अगर आप ग्राफ देखो तो शूटिंग में ही ओलंपिक्स के अधिकतर मेडल हर साल आते हैं। हर चार साल में आपको शूटिंग के मेडल्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो शूटिंग इज अ एक्सपेंसिव गेम, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो उस वजह से लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं आने में, बट वंस दे आर देयर तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इतना भी ज्यादा कॉस्टलीस्ट नहीं है, वी कैन, इट्स अ बेरेबल।
0: नए प्लेयर्स को आगे आना है, स्पेशली आज के यूथ को, जेन जी को, या तो फिर अभी जो स्कूल में है उनसे छोटे, तो ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए ग्राउंड जीरो पे क्या करना चाहिए?
1: ग्रास रूट लेवल पे बहुत से न्यू इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं और वो लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा बनाना। आपको एक दो घंटे के लिए भी वो लोग अलाउ करते हैं, बहुत मिनिमल फीस ली जाती है। जैसे मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ 200 रुपीज लिया जाता पर आ, वो लोग 25 पैलेट देते हैं आपको एयर राइफल के लिए, एयर पिस्टल के लिए। वो आपको सिखाते हैं बेसिक्स जो होते हैं, 1 or 2 आप वहाँ जाइए आपके बच्चों को लेके, या आप खुद भी जा सकते हो, एज बैरियर नहीं है। आप जाए, आप प्रैक्टिस करें। 200 or 300 rupees आई डोंट थिंक सो कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मास अवेयरनेस नहीं इस चीज को लेके। सो दे कैन गो देयर, दे कैन ट्राई इट। और ऐसा भी नहीं कि बर्डन आपको खरीदना ही है आपकी वेपन। बहुत से एसोसिएशन रेंट पे भी देते हैं, या अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। सिर्फ पैलेट्स का जो होता है दे से कि आपको आपका लेना पड़ेगा। सो दिस इज द होल थिंग। क्रॉसबो में भी सेम सिस्टम है कि आप वहाँ जाए, मिनिमल एक फीस आपको जमा करानी होती है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं से वेपन आउटसोर्स करते हैं।
0: तो कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग ये स्पोर्ट्स है, लोगों ने इसकी तरफ आना भी चाहिए और इसमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है, बस प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सो अपनी बातें और भी चलेंगी कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: Let's talk about sports. You are listening to MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है and अपने साथ है संजना जायसवाल लुनावत मैम जो कि क्रॉसबो शूटिंग प्लेयर है. So मैम एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है.
1: तो 0.177 0.22 ये दो में मैं खेलती हूँ. 0.177 जो होती है 10 मीटर्स एयर राइफल को कर कहते हैं और 0.22 50 मीटर्स थ्री पोजीशन में यूज होती है राइफल शूटिंग में. तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, थोड़ी इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो 0.22 में लाइसेंस्ड लगता है, लाइसेंस लगता है. जबकि जो 10 मीटर्स 0.177 है इट्स लाइसेंस की जरूरत नहीं होती उसमें. क्रॉसबो इज द सेम हंटिंग इक्विपमेंट है. तो यूरोपियन नेशंस यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है तो वहाँ कुछ लोगों को परमिट लगती है जबकि कुछ कंट्रीज में उसको परमिट की ज़रूरत नहीं होती है. बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, कंट्री की जो पॉलिसीज होती है उस हिसाब से होता है. फ्यूचर प्लान्स में मेरे ये है कि इंडिया के लिए किसी भी तरह से क्रॉसबो में मेडल लेना है. एंड हैंड इन हैंड मेरा 0.22 का भी प्रिपरेशन चल रहा है राइफल में विच इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट. तो मैंने अभी रिसेंटली अबू धाबी ओपन मास्टर गेम्स हुए उसमें मैंने गोल्ड लिया है. सो द थिंग इज लाइक के दोनों भी एक ओलंपिक स्पोर्ट एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैंड इन हैंड जा रहा है. क्योंकि इंडिया को लाइक इफ वी वांट जब हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड नेशन बनाना है सो इट्स लाइक ओवरऑल एक्सपेक्ट से बनता है कोई भी कंट्री. सो स्पोर्ट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल. सो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे नेशन के लिए.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और जो भी आपके प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए यही दुआ करते हैं. गोल्ड मेडल भी आप जीते यही उम्मीद करते हैं. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट. स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM. पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे दिम सही हा, हा। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।